मैं कहा मित्रा मैंने इस संबंध आज भी घसीटनिया ने ये पुरानिया सदियां दी गल ये भाग ये पुरानिया सदियां दी गल है 20वीं सदी की गल नहीं जद मनुख बौद्धिक तौर ते विकसित नहीं होया सी उदों प्रालबत दी गल सी भाग दी गल सी रब दी गल सी ते जेड़ा बंदा अज चंद्रमा ते पहुंच गया ते ओही पुरानिया गल्लां अज भी घसीटनियां ने भाग प्रालबत रब कहण लगा मनुख दा सारा विकास इसे करके रुकिया पिया भाग प्रालबत रब इहनूं कढ दे इक पासे मनुख बहुत अगे वध जाएगा मनुख बड़ा विकास कर जाएगा। मैं कहा मित्रा मैनु इस संबंध च कोई दलील दे सकेगा ते मेहनत ही सब कुछ है मैं तेरे सामने दलीलां रख सकदा ते मेहनत सब कुछ नहीं है भाग भी है पर तू कोई ऐसी दलील रख सकदा है कि मेहनत ही सब कुछ है भाग कुछ नहीं। कहन लगा हां मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देना। कहन लगा दो किसान होवन जमींदार ते दोहां कोल पंजाह पंजाह वीघे खेती होवे जमीन होवे एक किसान चंगा बीज पावे वधिया बीज वक्त सिर पानी देवे गोडी भी करे रखवाली भी करे कुदरती गल है उहदी फसल चंगी होवेगी ते जिहड़ा दूजा किसान है वह बीज घटिया जिहड़ा है ना वह बोवे ते वक्त सिर पानी भी ना दे वधिया खाद भी ना पावे समय सिर ढंग की रखवाली भी ना करे ते जे हुण उसकी खेती घट होई है ते इहदे च प्रालबत दा की रौणा है इहदे च रब की हुंदा है इहदे च भागां दा रौणा क्यों मेहनत घट कीती उद्यम घट कीता पुरशारत घट कीता है रब नूं विचे क्यों लियांदे प्रालबत की कल्पना क्यों खड़ी करदे। ते मैनूं कहण लगा जिहड़े बंदे कुछ करना नहीं चाहुंदे सन सुस्त सन उन्होंने प्रालबद नूं जन्म दिता है भाग नूं जन्म दिता है रब नूं जन्म दिता है सुस्त बंदे काली तबीयत आलसी मनुख उन्होंने रब नूं जन्म दिता है आप कुछ करदे नहीं सब कुछ रब ते सुटे और जापदा है इस तरह के ख्यालों तो उसने ख्याल लै लिया जिहड़े आम बंदे कहिंदे ने कोई गल नहीं गुरु कराएगा ते नाम जपांगे गुरु छकाएगा ते अमृत छकांगे अजे गुरु तैनू यही आखदा शराब भी पी अमृत ना छक जदों गुरु हुक्म करेगा उदों गुरुद्वारे आवांगे अजे ते गुरु ने तैनू यही हुक्म कीता तू पब दे विच ही जा। लोग जिहड़े इस ढंग नाल गल करदे ने उस तों जापदा है उहने गलत अंदाज़े जदों गुरु नाम जपावेगा उदों जपांगे कि अजे ते तैनू गुरु ने यही आख्या होया सारा दिन गंदे गीत अलाप गंदियां ही गल्लां अजे ते तैनू गुरु ने यही आख्या। दरअसल महापुरशां दे इन्हां बचनां नूं सही ढंग नाल समझिया नहीं गया कि करम करावन आपे आ या इसका बल नहीं इस हाथ करम करावन सर्व को नाथ। इन्हां पंक्तियां दी तह दिस जाना है जिस भगत ने कह दिता हे प्रभु मेरे को कुछ नहीं सब कुछ तेरा पता एक स्टेज ते पहुंच के एक सूझ समझ की शिखरता ते पहुंच के उसने आख्या मैं अखां बंद करके भी चल सकदा सड़क ते अखां खोल के भी चल सकदा पर जे मैं अखां बंद करके चलिया ते किधरे ठोकर खा जावांगा गिर जावांगा चोट लगेगी ते हुण मैं उत्थे रब नूं गालां कढ़न लग पवां परमात्मा नूं दोषी ठहरावां

सो दोस्तों हम शुरू कर दिया एंटरटेनमेंट सेगमेंट बैक टू बैक सॉन्ग तुम सुनोगे पंजाबी तो रिक्वेस्ट भी दिल्ली साड़ी वेबसाइट पर जा सकते हो www.2mifm.org.au ते उत्थे जाके रिक्वेस्ट वाला बटन प्रेस करके जो भी पंजाबी सॉन्ग सुनना चाहते सानू रिक्वेस्ट भेज सकते हो तो शुरू कर दिया ये एंटरटेनमेंट सैगमेंट पहला सोंग बरोटा ये सिद्धू मूसेवाले का सोंग तो दूजा सोंग अगला जन्म रंजीत बावे का सो बैक टू बैक सोंग्स जिदा जिदा रिक्वेस्ट आऊगी आप सोंग प्ले करा सो इंजॉय करो ये एंटरटेनमेंट सैगमेंट पहला सोंग बरोटा

सुनती तेरी आखी हुई गल नू। मैं ता सजना खामोश हुई रहनी हाँ, वे लोका के घट बोलदी, मैनू अज भी ने खंभ लग जांदे जे लंघा तेरे पिंड कोल दी।

0: तेनू पता ही फिर कल गलां थोड़े करना मैं फिर करके कौन दसे
1: चुप
2: चुप हेलो किथे जो की करन दे
1: बाऊ मैं रैली ते ही करदा फ्री ओके ओके
3: चल आ जा फिर
4: ओए सोना
2: मैं कड़ा हटना